0: 1630.ca. मिलना इवेंट्स लेके आ रहे ने तुहाटे वास्ते रू का सफर टूर। जी हाँ, लाइव मास्टर सलीम कॉन्सर्ट इन टोरंटो 24 जुलाई नो मिसिसागा कन्वेंशन सेंटर दे विच। एक ऐसी ही शाम जो छू लेगी। मिलना इवेंट्स लेके आ रहे ने तुहाटे वास्ते रू का सफर टूर। जी हाँ, लाइव मास्टर सलीम कॉन्सर्ट इन टोरंटो 24 जुलाई नो मिसिसागा कन्वेंशन सेंटर दे विच। एक ऐसी ही शाम जो छू लेगी तुहाडी रूह नो।
1: मैं के अचन जी सलाम तीने
0: दिला नु टुंबण वाले मास्टर सलीम दे सूफियाना तरान ने अते हाई एनर्जी पंगड़ा बीट्स गुंजन गे 24 जुलाई नो। मिलना इवेंट्स दे नाल ता फिर देर किस गल दी। तारीख नोट कर लो 24 जुलाई। अपनी टिकटा अज ही बुक करो। लॉग ऑन करो www.milnatickets.com ते। स्पॉन्सरशिप अते होर किसी भी जानकारी लई तुसी रोहन शर्मा नु कॉल कर सकदे हो 6477839873। बस रेडी हो जाओ नचण गाउण ते चूमण दे लई सुरां दे बादशाह मास्टर सलीम दे नाल।

0: for this.
1: ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਰੈਡੀ ਕਰਨਗੇ ਮੌਰਗੇਜ ਦੇ ਕਿੰਗ ਗਿਰੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ।
2: ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ, ਰੀਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ, ਡੈਟ ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ, ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ ਮੌਰਗੇਜਸ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫੰਡਸ।
1: ਸਭ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਗਿਰੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ। ਪ੍ਰੀ ਅਪਰੂਵਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਤੱਕ ਦੇਣਗੇ ਪੂਰਾ ਸਾਥ। ਡੀਲਿੰਗ ਵਿਦ ਆਲ ਬੈਂਕ।
2: ਕਾਲ 6476068110
1: ਔਰ ਵਿਜ਼ਿਟ sharmamortgages.com।
3: एक्सीडेंट ते रब ने हाथ दे के बचा लिया
4: ते कार दे खर्चियां नु हरजीत जंजुआ दी डिसेबिलिटी इंश्योरेंस ने संभालिया। अपने भविष्य नु सुरक्षित करन ते प्रेजेंट दे पीस ऑफ माइंड ली आज ही संपर्क करो हरजीत सिंह जंजुआ।
3: हर तरह दी वधिया इंश्योरेंस पॉलिसी ले याद रखो इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट हरजीत जंजुआ दा नाम। लाइफ इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी, क्रिटिकल इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस, विजिटर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, किड्स प्लान, RRSP, RESP, TFSA। कॉल करो
4: 6475-5294-647-835-5294। शादी दी मूवी बनवाउन लई या रिंग सेरेमनी लई वेडिंग एनिवर्सरी जागो प्री वेडिंग बर्थडे और एनी इवेंट दी वधिया वीडियोग्राफी ते फोटोग्राफ शूट करन लई याद रखो देसी सिनेमैटिक फिल्म अपने हाई एंड इक्विपमेंट्स ते क्रिएटिव आइडियाज नाल बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड कर देने। बुकिंग लई आज ही कॉल करो जगदीश सिंह नो 416-930-1251।
5: ਵੱਡੇ ਵੀਰੇ ਚੰਗਾ ਟਰੱਕ ਤੇ ਵਧੀਆ ਜੌਬ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ?
6: ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਟਰੱਕ ਸੇਲ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾ। 12 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਪਾਓ ਤੇ ਨਾਲੇ ਚੰਗੇ ਡਾਲਰ ਕਮਾਓ।
7: ਕੁਆਲਿਟੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਇੰਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਹੈ ਕਾਬਿਲ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ, ਟਰਾਲਾ ਡਰਾਈਵਰਸ ਤੇ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰਸ ਦੀ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਇੰਕ ਦੇ ਜਸਵੀਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ
8: 416-717-2929
7: 416-717-2929 ਕੁਆਲਿਟੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਇੰਕ 14 ਸਟੇਨਵੇ ਬੁਲੇਵਰਡ ਯੂਨਿਟ 4 ਇਟੋਬੀਕੋ।
9: मिलना इवेंट्स लेके आ रहे ने तुहाटे वास्ते रू का सफर टूर। जी हाँ, लाइव मास्टर सलीम कॉन्सर्ट इन टोरंटो 24 जुलाई नो मिसिसागा कन्वेंशन सेंटर दे विच।
10: मैं के अचन जी सलाम कहने आ।
9: सिर्फ से सिर्फ मिलना इवेंट्स दे नाल। ता फिर देर किस गल दी, तारीख नोट कर लो 24 जुलाई। अपनी टिकटा आज ही बुक करो। लॉग ऑन करो www.milnatickets.com ते। स्पॉन्सरशिप अते होर किसी भी जानकारी लई तुसी रोहन शर्मा अते प्रभ संधू नू कॉल कर सकदे हो 6477839873 या 4378700001।

0: 7899877 sofastudio.ca। थैंक यू जी।
1: ओहो सर्दी च हीट नहीं चलती ते गर्मी च एसी।
2: ले आपा हुणे करदे आ संधु साहब नाल गल ते करदे आ मसले दा हल।
1: एसी फर्नेस गैस लाइन वाटर हीटर या ह्यूमिडिफायर सर्विस या इंस्टॉलेशन नव एयर कंफर्ट ते जितेंद्र संधु नु कॉल लाओ ते लाइफ च कंफर्ट पाओ। कॉल 6477066640
3: 647-706-4640।
4: ओए ट्रक काला लिया जदों वेखो एदियां कमानियां इटलियां रहंदियां की करा।
5: मैं सुनया जी अपने पंजाबी भरावां जे अते गैरी ने खोल दित्ती है GTA विच ट्रकां दे स्प्रिंगां दी पहली शॉप PNJ स्प्रिंग व्हील अलाइनमेंट।
6: पहुंचो 5330 ब्रेडको बुलेवर्ड मिसीसागा मेन इंटरसेक्शन डिक्सी एंड मैथसन।
7: इत्थे पी लाइन लेजर मशीनां नाल अलाइनमेंट ते नवे स्टाइल दियां मशीनां नाल बैलेंसिंग कीती जांदी है। इन्ना ही नहीं 4 व्हीलर्स अते 18 व्हीलर्स दे टायर्स दा खास प्रबंध वी है। जे तुसी ट्रकां ते ट्रेलरां दी कमानियां दा तसल्ली बख्श काम करवाना चाहुंदे हो
5: कॉल करो जे एंड गैरी नू
7: 905-459-5533
5: 905-459-5533 ते
7: PNJ स्प्रिंग व्हील अलाइनमेंट।
8: टीम फोर एंटरटेनमेंट पेश कर दे ने पंजाबी विरसा 2026
9: ओए सावन चढ़िया
8: टोरंटो शो सैटरडे 25 जुलाई नू
9: दुनिया मेले जानती
8: थिएटर एट ग्रेट कैनेडियन टोरंटो।

0: डाउन पेमेंट ते मॉर्गेज दी बनी कोई गल?
1: होए शम्मी पठल होरानल हो गई गल, कार लेके देन तो अलावा डाउन पेमेंट ते मॉर्गेज दा भी मसला करनगे हल।
0: रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदन वेचन या इन्वेस्टमेंट लई याद रखो भरोसे ते विश्वास वाला कम्युनिटी दा जानिया पछाणिया नाम शम्मी पठल। तुहाडीआं लोड़ां मुताबक वधिया लोकेशन ते बेस्ट प्राइस ते घर आसानी नाल लेके दिंदे ने। रियल एस्टेट ब्रोकर शम्मी पठल, आज ही कॉल करो 416-917-7763 416-917-7763।

0: Doppelsad, jump, assas, grasses, hebbises, nandet, horsey, beasts, bole, sonny hall, sassier call.
1: मम्मी पापा दे वीजे ली सुपर वीजा इंश्योरेंस लेनी है ते बंटी बबली दा विजिटर वीजा भी लगवाना है मेरा ते खर्चा ही बड़ा हो जाना है
2: शमी पठल होरा ने तोड़ा खर्चा छोटिया इंस्टॉलमेंटा च बदल देना है
3: वधिया बेनिफिट वाली इंश्योरेंस पॉलिसी वाजिब कीमत ते लेके दिंदे ने शमी पठल
4: सुपर वीजा ते विजिटर इंश्योरेंस दी बेस्ट डील ले याद रखो इंश्योरेंस एडवाइजर शमी पठल जी दा नाम
3: 416-917-7763 416-917-7763 Life Insurance, Visitor Insurance, Super Visa Insurance, Critical Illness, Disability Insurance, RESP, Travel Insurance, Convert Expensive Mortgage Insurance to Term Insurance.

0: सच कहे जो हुंदा
1: चुल्ले ते पकती रोटी सच है
2: मिट्टी चुगदी फसल सच है
1: गुरु दी पानी सच है सतगुर प्यारे सच्चे दी बाह फड़दे

0: ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੇਡੀ ਓਵਰ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?
1: ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਨੀ ਕੋਈ, ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿੱਟ?
0: ਕਿੱਟ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਉਹ, ਦੇਖੋ ਭਾਜੀ ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ $10 ਦੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨੀ ਸੋਚਿਆ ਪਹਿਲਾਂ?
1: ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੀ 24 ਘੰਟੇ।
0: ਉਹੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਘੁੰਮਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਐਡੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
1: ਬਿਲਕੁਲ ਨੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰੰਨ ਮਰੀਦ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਸ ਉਹਦੇ ਗੋਡੇ ਮੋਡੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੀ ਹੈਗਾ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ 100 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।
0: ਠੀਕ ਹੈ,
1: ਮਿਹਰਬਾਨੀ,
0: ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਉਹਦੇ ਹੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੇ 24 ਘੰਟੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਨੀ ਘੁੰਮਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਘਰੇ, ਬੱਚਾ ਪਾਲ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਘੁੰਮੇ। ਸੋ ਖੈਰ ਨੰਬਰ ਹੈ ਆਪਣਾ 9056737537 9056733337 ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 9056733337 9056733337। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਾਸ਼ ਜੁੜਿਆ ਯੂਨੀ ਗਲੋਬਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਤੋਂ। ਸਰਾਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਖਰਚੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਸਰਾਸ਼ ਵੈਲਕਮ।
2: ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ
0: ਜੀ।
2: And then इसमें like government हम सिर्फ education funding में deal करते हैं, 8 साल हो गए हैं, बहुतों को assist कर चुके हैं, और like अगर आपका status PR citizen protected person है, Ontario में आप किसी भी city में रहते हैं, आसान से fully online courses करें, कोई इसमें like examination नहीं है, easy assignments है, fully online है, 2 से 3 घंटे आपने लगाने हैं, 30,000 to 100,000 की funding आप हासिल करते हैं, आपके अकाउंट में पैसा सीधा आता है गवर्नमेंट से, आपकी इनकम कम होनी चाहिए, नोटिस ऑफ असेसमेंट 2024 में लेस देन $70,000 तो ही आपको इसका फायदा है। आप ऊबर ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड है, हाउसवाइफ है, आपको अच्छा बेनिफिट है इसमें, कोई एज लिमिट नहीं है, आप अगर रिटायर्ड है पेंशन पे आप एलिजिबल है, और लाइक देयर इज नो क्रेडिट चेक। अब इसमें से अगर फैमिली ऑफ 4 है तो उनकी 80,000 की फंडिंग बनती है, 40,000 तो ग्रांट है जो कि नॉन रिफंडेबल टैक्स फ्री है, पैसा नहीं करना होता, आपने वापस नहीं करना होता वो पैसा, वो आपका पैसा है, ग्रांट्स। जो लोन है वो $40,000 है, और लाइक वो 0% पे और 1.5 साल बाद भी 2.5% साल का ब्याज है, तो आप असेसमेंट करा सकते हैं, ऑफिस आ सकते हैं, और लाइक इसमें अभी ग्रांट्स गवर्नमेंट बंद कर रही है इस हफ्ते के बाद, सो दिस इज द लास्ट वीक फॉर द ग्रांट्स। ग्रांट्स वो पैसा जो आपने लाइक वापिस ही नहीं करना होता, तो कोई इसमें चलाकी नहीं है, कोई कैच नहीं है, असली कागज लगते हैं, असली काम है, असली तरीके से कर रहे हैं, 8 साल हो गए हैं, और इसमें लाइक फंडिंग आपके अकाउंट में आती है, हमारे अकाउंट में नहीं आती, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे ऑफिस आ सकते हैं, गवर्नमेंट जैसे डेंटल केयर में, चाइल्ड केयर में, रिफ्यूजीज पे, यूक्रेन पे इतना पैसा लगाती है, आप पे भी लगाती है, पता नहीं तो ये नहीं कि इसमें कुछ कुंडी है, देयर इज नो कैच, कोई चलाकी, कोई ग्रीडीनेस नहीं है। हमारी फीस कितनी है, 199 या 499 कब देनी है, काम होने के बाद। अब जैसे लास्ट हफ्ते 29 बंदों के अकाउंट में फंडिंग गिर चुकी है, तो इसलिए अब वो हमारी फीस देंगे, तो कोई हम पैसे पहले नहीं लेते, कोई कुंडी नहीं है, कोई चलाकी नहीं है, फुली ऑनलाइन आसान से कोर्सेज करें, और कॉल आप हमें अभी कर सकते हैं। पहले हमारा ऑफिस एड्रेस है 218 एक्सपोर्ट बुलेवर्ड, तो ग्रांट को मिस ना करें, मैरिड है, अच्छा बेनिफिट है, सिंगल है, बेनिफिट नहीं है, मत कॉल करें, मैरिड है, जितने ज्यादा किड्स हैं, जितनी कम आपकी इनकम है एनओए पे, उतनी ज्यादा फंडिंग आपके खाते में आती है, कोई कागज नहीं हिल रहे क्योंकि गवर्नमेंट है यहाँ पे, ना कि बैंक, तो कोई चलाकी, कोई सेटिंग, कोई अप्रोच, कोई कमीशन नहीं है, नहीं है, नहीं है। कॉल करें, असेसमेंट कराएं, 437-264-3175 437-264-3175 437-264-3175 होने कॉल करो तो एस्टिमेट लो, 437-264-3175 437-264-3175
0: 437-264-3175 ਨੰਬਰ ਹੈ। ਸੁਨਾਸ਼ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਤੇ 905-673-3337 ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। 1981 ਹਾਂਜੀ
3: ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ?
0: ਵਧੀਆ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ?
3: ਬਸ ਵਧੀਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਯਾਰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸੋਚ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਬਈ ਮੈਂ ਗਿਫਟ ਨਾ ਦਵਾਂ, ਚਲੋ ਜੇ ਗਿਫਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਯਾਰ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਗਿਫਟ ਦਵਾ ਲਿਆਉਣਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਹੇਂਗੀ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਵਾ ਲਿਆਉਣਾ, ਕੋਈ ਐਕਸ ਵਾਈ ਜ਼ੈਡ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਬਟ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਬਰੋਬਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਜਿੱਥੇ

दो खूबसूरत मुल्कांच CHLO डिजिटल AM फ्रीक्वेंसी राही टोरंटो पेंसिल्वेनिया न्यूयॉर्क वाशिंगटन न्यूजर्सी तक सन सुन रहे आप सबका हार्दिक स्वागत करते हाँ। उम्मीद दिन खुशगवार चढ़दी कला वाला निरपाओ निरवैर रहेगा। मोहब्बत और प्यार चेहरे तो झलकता रहेगा, रोशनी रस्ते दिखावेगी, तुसी चलते रहोगे।

0: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਸਟ ਜਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਮੋਰਗੇਜ ਜਾਂ ਰੀਫਾਈਨਾਂਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਮੋੜੋ 1200 ਡੈਰੀ ਰੋਡ ਈਸਟ ਯੂਨਿਟ 22 ਮਿਸਿਸਾਗਾ 416-804-2015 416-804-2015
1: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
2: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129, 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 9054608888, दैट्स 9054608888।
1: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
3: जी असि आप दे नाल शेयर करेंगे जी शैल गैस स्टेशन। ए शैल गैस स्टेशन च मल्टीपल इनकम जनरेटिंग हैगे, एदे च टनल कार वाश हैगा, चार कॉइन कार वाश हैगे ने, एच कॉइन लॉन्ड्री हैगी, एच तीन यूनिट हैगे ने जेहड़े रेंटल ने, थ्री बेडरूम अपार्टमेंट हैगा, टेक आउट रेस्टोरेंट हैगा, यू नेम इट। ब्यूटीफुल लोकेशन, 1.2 एकड़ लॉट ही है, क्वाथरा लेक से एरिया च हैगा वे। तुसी इहो जी ਜਿਹੜੇ $750,000 ਇਨਕਮ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ 6479884449। ਹਸੀਬ ਸ਼ੇਖ 6479884449, ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਜੀ।
4: You're listening to Punjabi Versa, Monday to Friday, 11 a.m. to 12 p.m. For more information, call 647-448-1000. Toronto's number one station, AM 530.
5: Punjabi Versa!

0: IPL चल रहा है ओनली ऑन करो स्ट्रीम. Watch successful IPL season only on Karo Stream. www.karostream.com or call 905-204-1313.
1: A to Z किचन कैबिनेट भाई वाह क्या किचन कैबिनेट तैयार करते हैं लकी भाजी दी बनिया किचन कैबिनेट देखे गुआंढ भी बहाने नाल तुहाडे घरे आउंदे हन शीशे नाल भरिया किचन कैबिनेट वास्ते डिजाइनर किचन कैबिनेट वास्ते A to Z किचन कैबिनेट 416-720-7073 905-720-7073 ते कॉल कर सकदे हो.
2: लाओ जी चक्को फिर खुशखबरी ब्रैम्पटन निवासियां ले खुशखबरी हुण जदों भी तुसी कैनेडियन इंडियन या पाकिस्तानी ग्रोसरी खरीदना चाहो तां ब्रैम्पटन विच इंडियन फ्रूट लैंड दीआं चारों लोकेशनां विचों जिथे मर्जी आ जाओ चाहे 15 फैंडोवे ब्रैम्पटन होवे जां दूजी लोकेशन 45 डस्क ड्राइव ब्रैम्पटन या फिर तीजी लोकेशन 9985 मैकविन ड्राइव यूनिट 9 ब्रैम्पटन इंडियन फ्रूट लैंड ते हुण चौथी नवीं लोकेशन 1465 मेफील्ड रोड ब्रैम्पटन ग्रोसरी सब तो नेड़े इंडियन फ्रूट लैंड 905-456-9900.
1: हेलो
3: हेलो
1: जी काले भाजी
3: गुड मॉर्निंग सत श्री अकाल थानू भी ते अजय कोर ड्राइवर बाई जीरो इन्होंने
1: जी जी जी जी जी जी
3: मैं थोड़ा देखा पिचकर तुम उन्होंने फुल दे रहे सलीम जी नू मास्टर जी नू तत्ते मुल्क ठंडे मुल्क गाना तो सुना दे कोई ना कोई चौंक चौंक तत्ता तत्ता जा
1: सुना देने जी हुणे सुना दे बड़ी मेहरबानी
3: जल्दी सुनाओ जल्दी हां
1: हुणे सुना दे जल्दी सुना दे प्रोग्राम पंजाबी विरसा.
4: अज दे समय विच हर मापे दी इहो इच्छा है कि मेरा बच्चा पढ़ाई विच भी अगे होवे ते अपनियां जड़ां अपने संस्कारां ते अपनी पछाण नाल भी जुड़िया रहे. इस सुपने नूं साकार कर रहा है गोबिंद सरवर स्कूल. साडा मनना है कि असल सिक्ख्या ओ है जो बच्चे दे दिमाग नूं ज्ञान दिल नूं संस्कार अते जीवन नूं मकसद देवे. बेहद खूबसूरत जिंदगियां बनाउण लई वचनबद्ध है गोबिंद सरवर स्कूल. गोबिंद सरवर ब्रैम्पटन दी नवीं लोकेशन आ रही है कॉर्नर ऑफ एयरपोर्ट रोड एट क्वीन स्ट्रीट. जेके तू ग्रेड 10 तक रजिस्ट्रेशन करने लई संपर्क करो 905-458-6222.
5: तुसी अपने फोन प्लान ते बहुत पैसे दे रहे हो. सेलुलर पॉइंट ते असी तुहाडे लई लेके आया बहुत ही वड्डी सेविंग्स बेस्ट फोन प्लान्स ते बिना किसे शर्त तो. चाहे तुसी बिजनेस या फैमिली प्लान्स च सेविंग चाहुंदे हो नो कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन या लेटेस्ट फोन चाहिदा सब तो बेस्ट कवरेज नाल सेलुलर पॉइंट ते तुहानू सब कुछ मिलेगा. विजिट करो सेलुलर पॉइंट सेव टुडे इट्स दैट इजी. अपनी नियरेस्ट लोकेशन cellularpoint.ca ते वेखो. सेलुलर पॉइंट मोर फोन्स मोर प्लान्स मोर चॉइस.
6: यार इना इंश्योरेंसा ने ते धुआं कढ़ाता वधिया ते जायज रेट कित्थों मिलेगा.
7: टॉप फाइनेंशियल इंक तो जो अपनियां बेहतर ते भरोसेमंद सेवावां लई जाने जांदे ने.
8: क्रिटिकल मॉर्गेज RESP RRSP विजिटर इंश्योरेंस सुपरवीजा स्पेशल डिसेबिलिटी प्लान फॉर ट्रकर्स. जे थोड़े कोल 20 नालों ज्यादा ड्राइवर ने ता तुहानू अनबीटेबल प्राइस लेके देंगे.
7: कॉल करो 20 सालां दे तजुर्बे वाले सुरजीत सिंह पड्डा जी नू 647-300-3100-3100
8: या मिलो 70 डेल्टा पार्क बुलेवार्ड यूनिट 11 ब्रैम्पटन.
9: भाई ये ट्रक तो हुण मैं चंगी तरह चलाउण लग पिया हुण सोचदा भी कोई यूज ट्रक ही लै लवां पर समझ नहीं आउंदी भी कित्थों लवां.
10: ओ इहदे च सोचण वाली कीड़ी गल आ. ईगल ट्रक सेल्स वाले बिल सेखो नूं कॉल कर ओए ओहदे तो वधिया कोई नहीं.
11: जी हां जे तुहानू यूज ट्रक दी लोड है तो तुहाडी पसंद दा मेक एंड मॉडल दा ट्रक तुसी इहनां तों लै सकदे हो. अपना ट्रक वेचण लई भी याद रखो ईगल ट्रक सेल 17 स्ट्रेथन एवेन्यू ब्रैम्पटन. कॉल विल सेखो 416-819-6000.
1: डेल मुंडी रियल स्टेट दा सितारा लोकां दा विश्वास डेल मुंडी नवे प्रोजेक्ट दा माहिर डेल मुंडी डील दवाउण दे विच होर वाधा करदा डेल मुंडी कम्युनिटी विच लंबे समय तों नाम बना चुका डेल मुंडी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी दीआं बारीकियां नूं समझण वाला डेल मुंडी अगली प्रॉपर्टी तुहाडी एक्सपर्ट एडवाइजर रियल्टर डेल मुंडी 416-313-1313 डेल मुंडी 416-313-1313 डेल मुंडी साहब एडलाई नाल ही डेल मुंडी साहब ही आ गए. डेल मुंडी साहब जी की हाल चाल है सर.
12: जी जी बड़ा शुक्रिया तुहानू सारे भैन भरा नू बड़े आदर प्यार सत्कार नाल सत श्री अकाल सलाम नमस्ते प्रवान होवे जी.
1: सब तो पहला तुहानू बहुत बहुत मुबारकबाद और तुसी परिवारां दा दिल जित लिया और मेनू बड़िया तुहाडे बारे अच्छिया न्यूज अच्छे खबर मिलदी है ਕਿ ਡੇਲ ਮੁੰਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੀਜ਼।
12: ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਜੀ, ਦੋ ਢਾਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੈਟਲ ਤੁਸੀਂ ਛੇੜਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਬੈਟਲ ਗਰਾਊਂਡ ਆ ਕੋਈ ਈਜ਼ੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਗਰਪਾਲਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਡੀਓ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵੇਚਿਆ ਇਹ
1: ਜੀ ਜੀ,
12: ਸੋ ਹਰਜੀਤ ਜੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਵਾਂ, ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਰਿਵੇਲਟਰ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਆਪ ਸਾਰਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਿਲਡਰ ਨਾਲ ਫਾਈਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਸੀਂ $6 lakh ਘਟਾਇਆ ਜੀ, ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਆਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਸੀਂ $5 lakh ਘਟਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ $4 lakh ਘਟਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ $3 lakh ਘਟਾਇਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ ਉਹ ਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਅਸੀਂ

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बम रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी लई कॉल करो 416-213-1165 ते 416-213-1165।
1: भाई साहब जिंदगी दा कोई भरोसा नहीं, इस करके हाथ दे विच इंश्योरेंस पॉलिसी होनी बहुत जरूरी है।
2: ता इस लई आज ही हरप्रीत सैनी नो मिलो। इना कोल ने स्पेशल लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स विद इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। तुहानू सिर्फ 10 साल या 20 साल लई पे करन दी लोड है ते इन्ने नाल ही तुसी पूरी लाइफ कवर्ड हो। डिविडेंड्स दे नाल हर साल कैश वैल्यू ग्रो करदी है ते कवरेज इंक्रीज करदी है। वधेरी जानकारी लई कॉल हरप्रीत सैनी 416-817-6500।
3: Kataria Tours and Travels located near 2883 Derry Road East Upper Airport and Derry the intersection upper to see cheap flight tickets si pal de vichu Toronto to Delhi, Delhi to Amritsar de route options sunu chahide ne ja tusi visa services di pal de vichu puri family vacation upar jaan di soch rahe ne jithe tuhanu all inclusive vacation packages bhi milde ne pahunchna wa ji Kataria Tours and Travels Airport and Derry the intersection upar call kar sakde ho 905-678-1200 905-678-1200 Kataria Tours and Travels Airport and Derry the intersection upar
4: aaj khush to baat ho gaya
5: oh ta hona hi hai jadon tino video da no freezing no buffering ala 4k ultra high quality iptv box hove tainak ta banda hi hai
4: aaj mere paas bill hai property hai bank balance hai bangla hai gaadi
5: ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਮੂਵੀਜ਼ ਨੇ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਜ਼ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਸ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵਰਲਡਸ ਬੈਸਟ ਤੇ ਹਾਈਐਸਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਆਈਪੀਟੀਵੀ ਬਾਕਸ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕੋਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੇਡੀਓ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ। ਹੋਰ ਦੱਸ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ
6: ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ
5: ਉਹ ਭਾਜੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ 40 ਇਅਰਸ ਇਨ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਬਿਜ਼ਨਸ
7: ਡਾਊਨ ਕੋ ਪਕੜਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ
5: ਪਰ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਓ ਐਬਨੀਜ਼ਰ ਐਂਡ ਗੋਰ ਰੋਡ 905-204-13 ਜਾਂ ਢਿੱਲੋਂਵੀਡੀਓ.com ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ
8: Nobel Fresh Foods ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਦੌਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਟਾਪ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਲੋ ਪ੍ਰਾਈਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਬਲ ਫ੍ਰੈਸ਼ ਫੂਡ ਫੇਰ ਨੰਬਰ ਲੈ ਗਿਆ ਆਟਾ ਦਾਲ ਚਾਵਲ ਨਾਲੇ ਸਬਜ਼ੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਘਿਓ ਸਭ ਮਿਲੇਗਾ ਨੋਬਲ ਫ੍ਰੈਸ਼ ਫੂਡ 2945 ਸੈਂਡਰਵੁੱਡ ਪਾਰਕਵੇ ਈਸਟ ਦੂਸਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 20 ਗਲਿੰਗਹਮ ਡਰਾਈਵ ਇਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫੋਨ 289-801-0566 ਨੋਬਲ ਫ੍ਰੈਸ਼ ਫੂਡ
9: नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज
10: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा कॉल 905-460-8888 दैट्स 905-460-8888
9: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ
11: ओ पंजाबी बोले ना ते मैं इंग्लिश विच अड़दा सी ओ मेरी लुक ते मरदी सी ते मैं ओदे लक ते मरदा सी। सत श्री अकाल जी, मैं हां थोड़ा अपना रोशन प्रिंस ते तुसी सुन रहे हो वतनों दूर रेडियो।

0: फैंसी सेट, चांदी की बैंगल्स और चांदी की पायल।
1: इतनी बस नहीं, जेंट्स ने चांदी के कड़े, चांदी की चेन, चांदी के ब्रेसलेट,
0: बर्तन और चांदी के किसी भी तरह का सामान लेने के लिए वन एंड ओनली सिल्वर हट
1: फोर एंड अवनीजर द इंटरसेक्शन पे गुरुद्वारे बाय प्लाजा के बीच सिल्वर हट
0: 6473393521
1: 6473395121 4525 अवनीजर रोड ब्रैम्पटन
0: सिल्वर हट
2: वे जिथे चलेंगा चलूंगी नाल तेरे वे टिकटा दो ले ले
3: लेनिया हो या चार बिजनेस ले जाना होवे या फिर घूमन ले इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट हर तरह दे ट्रैवलिंग पर्पस ले कांटेक्ट करो एयर टिकट्स इंश्योरेंस पासपोर्ट एंड वीजा सर्विस ओ वी रीजनेबल प्राइसेस ते स्पेशल ट्रैवल पैकेजेस भी अवेलेबल ने कटारिया टूर एंड ट्रैवल 2883 डेरी रोड ईस्ट मिसिसागा कॉल 9056781200
4: आखरी अपील साड़ी रद्द हो गई
5: ओ भरावा साड़ी भी अपील रद्द हो गई है
6: मैं ता तुहानू पहले ही कहा सी मम्मी डैडी दा इमिग्रेशन दा केस स्मार्ट इंटरनेशनल इमिग्रेशन वालिया तो करवाओ
7: सुपर वीजा फॉर पेरेंट्स विजिटर वीजा पेरेंट्स परमानेंट केस स्किल्ड वर्कर्स स्टडी वीजा स्पाउसल वीजा अते रिफ्यूजल केसां दे माहर तुहाडे हर तरह दे वीजे दे सुपर स्पेशलिस्ट
8: स्मार्ट इंटरनेशनल इमिग्रेशन 7900 ओरंटेरियो स्ट्रीट स्वीट 306 ब्रैम्पटन 9057958999
9: मतलब शायद तुसी स्वीट महल नहीं गए
10: नहीं मैं मर जा उथे क्यों होने
9: जीटीए दा सब तो स्वादला खाना उथे ही ता मिलता है सही सुनिया भाई जिन्ना सोना रेस्टोरेंट है उस तो भी ज्यादा स्वाद स्वीट महल दी हर एक डिश है जलेबियां पकौड़े समोसे टिक्कियां व्याह होवे पार्टी या होण किटियां स्वीट महल दी वेज या नॉन वेज आइटम्स ले डाइनिंग करो या केटरिंग करवाओ इको नंबर कुमाओ 416-679-9999 और विजिट यूनिट 9680 रेक्सडेल बुलेवार्ड टॉबिको स्वीट महल ट्रेडिशन ऑफ टेस्ट
11: ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਸਟ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਜਗਜੀਤ ਮਾਹਲ ਸਾਰੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਹੋਣਾ ਰਹੇਗਾ ਸਹੀ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਹੋਏਗਾ ਰਾਜਵੀਰ ਬੋਪਾਰਾਈਜ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਟਹਿਣਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੌਂਗ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਨਵਾਂ ਗੀਤ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਆਰਨੇਦ ਦਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸੁਣ ਦਿਆਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ

0: कनेडा विच रहंदे हुए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग लई।
1: इसे लई मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस दे सिमराज सिद्धू तो ही करवाई है।
2: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो ता सब तो वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने। पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लई हुणे कॉल करो 416-453-3381 ते 416-457-3381 ते।
0: नाले जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही लई हुई है तो तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो। बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाउणगे। हुणे ही सिमराज सिंह सिद्धू नूं कॉल करो 416-457-3381 416-457-3381।

0: multiple locations in GTA. For more information, visit rajdhanisweets.ca.
1: कार वैन ट्रक दा कम होवे ता याद रखो रॉयल ऑटो सेंटर रिलायबल अफोर्डेबल अते ऑनेस्ट सर्विस जिथे कि मैं भी गड्डियां नु लेके जाना रिपेयर दे लई रॉयल ऑटो सेंटर टेस्ला दे व्हीकल्स ते भी कम करदे कोई भी रिपेयर किसी भी मेक एंड मॉडल सेफ्टी सर्टिफिकेशन उबर लिफ्ट दी सेफ्टी करवानी है स्पेशलाइज करदे ने इलेक्ट्रिकल अते कंप्यूटराइज्ड डायग्नोस्टिक कम च स्टील्स एंड मेलनी रॉयल ऑटो सेंटर एंड एमिशन टेस्टिंग 905-799-1478-905-799-1478-1478 रॉयल ऑटो सेंटर
2: गेट रेडी GTA